बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचा

0: राजा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

पहली तारीख तो वाकई है, और इस गाने में ना वो पूरा माहौल एकदम से रिक्रिएट कर दिया है, जो कि एक जमाने में तनख्वाह मिलती थी एक तारीख को और तब हुआ करता था कि सिनेमा देखने जाना है तो भी तनख्वाह मिलेगी तब जाएंगे, बच्चों को साइकिल दिलानी है, खिलौने दिलाने हैं, गिफ्ट्स दिलाने हैं तो वो भी पहली तारीख को होगा, श्रीमती जी को साड़ी भी पहली तारीख को दिलाई जाएगी, या घर में कोई भी सामान आएगा तो पहली तारीख को जब तनख्वाह मिलेगी उसके बाद ही आएगा। अगर आपको भी ये गाना पसंद आया है तो फिर आप धन्यवाद दे सकते हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी को, क्योंकि इनकी पसंद पर सुना आपने ये बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि मैंने बहुत दिनों बाद सुना। तो आप सबकी पसंद पर अभी ये गाना हमने सुना, ये है दिल का मेल बॉक्स। आप भी अपनी पसंद हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी से ईमेल कर दीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर। और अब आ रहा है अगला गाना आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, नीतू के साथ हैं आप दिल का मेल बॉक्स में। अगला गाना है दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई की पसंद का, और ये भी बहुत ही प्यारा सा चुलबुला सा गाना है, तो इस गाने का

0: मालूम नहीं है
1: हमसे सुनो।
2: दिल का मेलबॉक्स सुन रहे हैं आप, और अब जो अगला गाना आने वाला है वो है मदर इंडिया फिल्म से नरगिस पर पिक्चराइज, और नरगिस के अलावा जितने भी कलाकार हैं उसमें उन सभी पर है क्योंकि ये ग्रुप सॉन्ग है। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और इस गाने को सुनना चाहा है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, महिंदर मोदी और ठाकुर साहब ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है दिल का मेल बॉक्स जिसमें आप सुनते हैं अपनी पसंद के गीत। तो अब अगले गाने की बारी है नरेश मल्होत्रा, नीतू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, ये सब सुनना चाहते हैं ये गाना।

0: भूल रही हूँ कि किन लोगों ने ये फरमाइश भेजी थी। सुषमा, सुनील, अनन्या और राजवीर, आपने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा उम्मीद करते हैं। और अब वक्त हो रहा है कि इस प्रोग्राम से को यहीं पर समेट लिया जाए। तो नीतू को इजाजत दीजिए, ये जो आखिरी गाना आप सुनने जा रहे हैं ये जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल की पसंद का है।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित

0: पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53.50 रुपए तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजे गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. The President of Myanmar will also meet President Draupadi Murmu this evening at Rashtrapati Bhavan. The notification for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states has been issued today. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो गया है तस्वीर। मैं हूं आपके साथ नीतू और आज हम बात करेंगे उस भव्य मंदिर की, उस भव्य जगह की जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला है। गुजरात के प्रभास पाटन में समंदर किनारे है ये भव्य मंदिर, जिसे आक्रमणकारियों ने कितनी ही बार लूटा, लेकिन जितनी बार इसे ध्वस्त किया गया ये उतनी ही बार फिर से अपनी पूरी भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में माना जाता है कि सोमनाथ के शिवलिंग के उद्भव के साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो आज की तस्वीर में सोमनाथ को जरा और करीब से जानेंगे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर

हमला किया था और बुरी तरह ध्वस्त करके इसके सारे कीमती रत्न लूट कर ले गया था। लेकिन जब इसका पुनर्निर्माण कराया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसी तरह जो भी आक्रमणकारी बाहर से आया उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और राजा महाराजाओं ने इसे फिर से बनवाया। 12 नवंबर 1947 को जब लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण की आज्ञा दी और इसके बाद सोमनाथ मंदिर की देखरेख और पुनर्निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया। 11 मई 1951 में नई संरचना का उद्घाटन हुआ। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, इस पर आप सुन रहे हैं तस्वीर नीतू के साथ।

बात हो रही है गुजरात के सोमनाथ की। सोमनाथ मंदिर का जो उल्लेख है वो शिव पुराण में भी किया गया है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने पहली बार इस मंदिर पर

सोमनाथ मंदिर की बातें हो रही हैं आज आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ तस्वीर में। सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली में बना है और इसके कई खंभे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जैन वास्तुकला के तत्व भी देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि सोमनाथ के तटवर्ती प्राचीन मंदिर का निर्माण चार चरणों में हुआ था। भगवान सोम द्वारा सोने से, रवि द्वारा चांदी से, भगवान कृष्ण द्वारा लकड़ी से और राजा भीमदेव द्वारा पत्थर से। जो अभी वर्तमान मंदिर है उसके गर्भगृह में है ज्योतिर्लिंग, जिनके दर्शन के लिए आपको लाइन में लगना होगा। मगर लाइन जो है ना वो चलती रहती है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आपको एक फोटो गैलरी भी मिलेगी, जिसमें प्राचीन मंदिर के खंडहरों, जीर्णोद्धार और उत्खनन की कहानी बताने वाली तस्वीरें हैं।

पौराणिक कथाएं कहती हैं कि सोम यानी कि चंद्रमा को राजा दक्ष ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से चंद्रमा की चमक घटने लगी थी और इसका पृथ्वी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और आखिरकार भगवान शिव यहां प्रकट हुए यानी सोमनाथ, और चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार के अनुसार ही समुद्र में ज्वार बढ़ता और घटता है। शहर का नाम भी प्रभास पाटन है। प्रभास का मतलब है चमक, जो कि चंद्रमा से जुड़ी हुई है।

0: मैं डॉक्टर ऋचा सूद, सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो, ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, वो आप अभी सुन रहे हैं नीतू के साथ और ये है तस्वीर। तस्वीर में हम बातें कर रहे हैं सोमनाथ की, और सोमनाथ की यात्रा में आपको कुछ और मंदिर भी मिलेंगे। इनमें गीता मंदिर, तुलसी श्याम मंदिर, भालका तीर्थ, ये सब शामिल हैं। भालका तीर्थ जो है वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण को जरा नाम के एक शिकारी का बाण लगा था और इसी के बाद वो पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ लोक चले गए थे। गीता मंदिर वो जगह है जहां निजधाम जाने से पहले उन्होंने विश्राम किया था। गीता मंदिर में जहां 18 संगमरमर के खंभे हैं और उन पर श्रीमद्भगवद गीता का संदेश उकेरा गया है।

0: बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका

गीता मंदिर के पास ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, बलराम जी की गुफा और परशुराम तपोभूमि है। तुलसी श्याम मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ जो काले पत्थर की मूर्ति है वो 3000 साल पुरानी बताई जाती है। इस मंदिर के पास एक गर्म गंधक का झरना है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें स्नान करने से त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। आप जब जा रहे हैं सोमनाथ तो फिर वहां पर एक अहिल्याबाई मंदिर है, वहां भी जा सकते हैं। इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1782 में कराया था। इस मंदिर में प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों में भी भगवान शिव की पूजन परंपरा को कायम रखा गया।

में नीतू है आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ जिले में है। गिर के सुविख्यात जंगल और दुनिया भर में मशहूर सोमनाथ मंदिर से मिलकर गिर सोमनाथ जिले का नाम पड़ा। यहां आप प्रभास पाटन संग्रहालय भी देख सकते हैं जो कि 1951 में स्थापित किया गया था। ये पत्थर की मूर्तियों और पत्थर के शिलालेखों के लिए लोकप्रिय है। सोमनाथ बीच पर आप कई तरह की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। सोमनाथ में एक त्रिवेणी घाट है जहां हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम मिलता है। इसी घाट के उत्तरी किनारे पर है सूर्य मंदिर जो कि सूरज देवता को समर्पित है। ये खासतौर पर अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर है। इसकी दीवारों पर हाथी और शेर जैसे जानवरों की बेहतरीन मूर्तियां बनी हुई हैं और मंदिर के प्रवेश द्वार पर सूर्य देव की एक तस्वीर है जिसमें उनके 7 घोड़े और 2 पत्नियां हैं।

सोमनाथ एक तीर्थ है और तीर्थ यात्रा के लिए तो यूं भी कोई भी समय उपयुक्त होता है, मगर मौसम अच्छा होना तो यात्रा का जो मजा है और आनंद है वो बहुत ही आरामदायक हो जाता है, दुगना हो जाता है। और इसीलिए सोमनाथ जाने का सही समय अक्टूबर से मार्च माना जाता है, जब मौसम ठंडक की तरफ बढ़ने लगता है। हवाई यात्रा करना चाहें तो निकटतम हवाई अड्डे हैं जूनागढ़, दीव और राजकोट में। सोमनाथ में रेलवे स्टेशन तो है, तो आप ट्रेन से जा सकते हैं। देश के सभी प्रमुख शहरों से बस सुविधा भी है। आप जो चाहें तरीका अपनाएं और उस तरीके को अपनाकर आप पहुंच सकते हैं सोमनाथ मंदिर। तस्वीर में आज पूरी तस्वीर में आज हमने सोमनाथ मंदिर की बातें की, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और इसी तरह आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ। अब बढ़ते हैं हम तस्वीर में अगले गाने की तरफ।

बिल्कुल, चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही तो जीवन है। और इसी के साथ नीतू को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमा और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रूपये से लेकर 53.50 रूपये तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: 당근.
1: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रतिभा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कार्यक्रम घर आंगन हमारे और आपके बीच की एक ऐसी कड़ी है जो मजबूती से हमें आपसे बांधे हुए है, जहां हमें इंतजार रहता है आपका, आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके सुझावों का। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए कार्यक्रम के जरिए और अपने संदेशों के जरिए। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का इस प्यारे से सुंदर से गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी अनुपमा। और श्रोताओं, सबसे पहले बात दिन विशेष की। आज नीलम संजीवा रेड्डी जी की पुण्यतिथि है और आप भारत के जो थे छठे राष्ट्रपति थे। विदेश के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें निर्विरोध चुना गया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का प्रतीक माना जाता है। वे आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे और लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। उनका व्यक्तित्व शांत, विनम्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित था। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके योगदान को आदरपूर्ण स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

सप्ताह है जो कि आज मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में स्थापित यह दिवस बच्चों के पालन पोषण संरक्षण और सामंजस्यपूर्ण विकास में परिवारों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। यह दिन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि बच्चों के पालन पोषण की प्राथमिक जिम्मेदारी माता पिता और देखभाल करने वालों की होती है और बच्चे के पालन पोषण के लिए पोषणकारी स्थिर वातावरण प्रदान करने के महत्व पर यह दिन बल देता है। और श्रोताओं, जिस तरह अभिभावक परिवार की नींव होते हैं उसी तरह बच्चे भी परिवार की नींव को सुदृढ़ बनाने में भागीदारी निभाते हैं, उसमें भागीदार होते हैं। उनकी रक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान रखना भी बेहद अहम हो जाता है और आज बच्चों के हित और उनकी रक्षा के लिए मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। इस दिवस की शुरुआत 1949 में मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की बैठक में की गई थी और इसे पहली बार 1 जून को ही मनाया गया था। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा बाल श्रम और शोषण को रोकने और उनके सुरक्षित व उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने का जो संकल्प लेने का अवसर वो प्रदान करता है। बच्चे देश के भविष्य हैं, सशक्त बच्चे सुदृढ़ समाज की बुनियाद रखते हैं। तो आइए हम सभी बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु संकल्प लें और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज को उनके अधिकारों स्वास्थ्य सुरक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में जागरूक करें।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है। श्रोताओं, विश्व भर में सभी माता पिता को सम्मानित और उनकी सराहना करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है।

बूट पॉलिश। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज थी मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की। श्रोताओं, प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर अब हमारे बीच नहीं रही।

उन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी, गुजराती, असमिया, बंगाली सहित विभिन्न भाषाओं में कई गीत गाए। और दोस्तों, खास तौर से 60 और 70 के दशक में उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से संगीत जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। सुमन कल्याणपुर का जाना निश्चित तौर पर समस्त संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भारतीय फिल्म संगीत में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। घर आंगन परिवार सुमन कल्याणपुर को नमन करता है, और आइए उनको स्मरण करते हुए सुनते हैं उन्हीं का ही ये गीत।

बात एक रात की। इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर की। और श्रोताओं, एक और बात करेंगे दिन विशेष की ही। आज विश्व भर में मनाया जा रहा है दुग्ध दिवस। इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को पहचानना और पोषण, आजीविका, कृषि और सतत विकास में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र के योगदान को उजागर करना है। प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाने वाला विश्व दुग्ध दिवस दूध के पोषण मूल्य के बारे में जागरूकता फैलाता है और विश्व भर में खाद्य प्रणालियों को सहयोग देने वाले दुग्ध उत्पादकों के प्रयासों को सम्मानित करता है। विश्व दुग्ध दिवस 2026 का विषय महिला किसानों का सम्मान है। यह विषय दुग्ध उत्पादन में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है और कृषि, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने के वैश्विक प्रयास के अनुरूप है। यह एक वैश्विक आयोजन है जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के

खाद्य और कृषि संगठन ने 2001 में की थी। इसका उद्देश्य दैनिक पोषण, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में दुग्ध के महत्व को पहचानने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। तो श्रोताओं, आज हम उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं जो डेयरी व्यवसाय में सतत प्रयासरत हैं और हमारे घरों तक इस संपूर्ण पोषण को लगातार पहुंचा रहे हैं।

प्रीति सागर की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी मंथन। श्रोताओं, आकाशवाणी अपने 90 वर्षों का सफर पूरा करने जा रहा है। एक ऐसा सफर जो अथक रहा, जो निरंतर चलता रहा और चलता रहेगा। निरंतर विस्तार और विकास की इस यात्रा में 1990 के दशक तक आकाशवाणी ने देश के कोने कोने में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी थी। 2 मार्च 1990 को आकाशवाणी ने अपनी सफलता का एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया और आंध्र प्रदेश के वारंगल में इसका 100वां स्टेशन स्थापित किया गया। महज 3 वर्षों के भीतर 1993 में आकाशवाणी ने उड़ीसा के बहरामपुर में अपना 150वां स्टेशन भी स्थापित कर लिया। यह उपलब्धि देश में रेडियो प्रसारण के तेजी से फैलते नेटवर्क का प्रतीक थी, जिसने आकाशवाणी को हर कोने तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जिसने आकाशवाणी को हर कोने तक पहुंचाया। और आज आकाशवाणी हम सभी के दिलों में धड़कता है। आवाजों को विस्तार देता आकाशवाणी आज देश के हर दिल की धड़कन है, धड़कन बन चुका है।

0: भाई भाई, अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी गीता दत्त की।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से। आकाशवाणी

0: के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
1: श्रोताओं, अब बात एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने साज और सुरों को जीवन में शामिल कर खुद को दी एक नई पहचान और साबित कर दिया कि जीवन चुनौतियों का पर्याय है, पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण और रवैया आपको दे सकता है वो ताकत और हिम्मत जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। जी हाँ, बात करेंगे प्रोफेसर मंगला कपूर जी की। अब ग्वालियर घराने की एक प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर हैं। श्रोताओं, मंगला कपूर जी का जीवन इतना सहज नहीं रहा। मात्र 12 साल की उम्र में पारिवारिक विवाद के चलते उन पर एसिड अटैक कर दिया गया और यहां से शुरुआत हुई उस संघर्ष की जो कठिन था, जिसका दर्द असहनीय था। उन्होंने 6 अस्पतालों में बिताए और 37 सर्जरी करवाई। आघात शारीरिक और मानसिक दोनों ही था। समाज की अवहेलना भी कहीं ना कहीं मानसिक कुठाराघात कर रही थी, पर मंगला जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी शिक्षा और संगीत के प्रति अपने जुनून को नहीं छोड़ा और सुरों को साधना शुरू किया। PhD की उपाधि प्राप्त की और BHU में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो गई। अब जीवन संगीत, सुर साधना, राग आलाप के साथ चलने लगा। उन्होंने दुर्लभ भारतीय रागों का संरक्षण करना शुरू किया और उनके इस काम को सराहना मिली और सम्मान भी। इस उपलब्धि ने उन्हें काशी की लता की उपाधि दिलाई। उन्होंने संगीत को केवल आत्मसंतुष्टि और प्रस्तुति का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन भी बनाया। मंगला कपूर जी बच्चों को मुफ्त संगीत शिक्षा प्रदान करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि बच्चों की संगीत सीखने के मार्ग में कोई रुकावट ना आए। उनकी असाधारण दृढ़ता, साहित्यिक उपलब्धियां और संगीत क्षेत्र में योगदान को सराहाया गया और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मंगला जी का जीवन श्रोताओं एक मिसाल है और हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर उन चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति ही आसमान की बुलंदियों को छूता है, जैसा कि मंगला जी ने किया। आप वाकई हमारे लिए एक प्रेरणा हैं।

मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी लाल पत्थर। श्रोताओं, हमारी संस्कृति और परंपराओं में भगवान की पूजा, उनके विग्रह की पूजा की जाती है। हम अपने ईष्ट की प्रतिमा को घर में, अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं, उन्हें एक निश्चित स्थान देते हैं। पर इन प्रतिमाओं के खंडित होने पर हम इन्हें जल प्रवाहित या किसी पेड़ के नीचे या फिर मंदिर में अपने ईष्ट को छोड़कर आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि अब खंडित मूर्तियों को आपको इधर उधर छोड़ने की जरूरत नहीं है, और मूर्तियों को जो है, अब इन मूर्तियों को रिसाइकिल किया जाएगा, और जिसके लिए विशेष सेंटर बनाने की घोषणा की है। श्रोताओं, इन सेंटर्स को मुख्य रूप से मंदिरों, नदियों और नहरों के पास खोलने की योजना बनाई जा रही है, ताकि हम आसानी से अपनी मूर्तियों को वहां पर जमा कर सकें। अब भविष्य में आपको अपने घर की जो मूर्तियां हैं, जो विग्रह टूट गए हैं, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको इधर उधर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बता दें कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है। जैसा कि बताया कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर विशेष कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे और लोग अपनी मूर्तियों को वहां पर जमा कर सकेंगे। इन मूर्तियों को अब आप इधर उधर फेंकेंगे नहीं, तो जहां पर आप इन्हें जमा करेंगे, जिस संग्रह सेंटर में आप इनको जमा करेंगे, वहां पर वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकिल करके इन मूर्तियों को उपयोगी चीजों में बदला जाएगा। सरकार आम जनता से कलेक्शन सेंटर के लिए जगह और बेहतर सुझावों पर भी राय ले रही है, तो अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव वहां पर दे सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं।

आशा भोंसले की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी काजल। और श्रोताओं, कार्यक्रम घर आंगन है। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और आपको हमारा ईमेल आईडी मालूम है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, हमारा ईमेल आईडी जो कि है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, fmgoldga@gmail.com। और श्रोताओं, अब बात कुछ मौसम की, गर्मी के मौसम से जुड़ी हुई और हमारे खान पान से जुड़ी हुई, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो खान पान होता है उसका बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम गरिष्ठ भोजन यानी कि जो भारी खाना होता है उसको खाने से बचते हैं और हमें ज़रूरत होती है हल्के पौष्टिक भोजन की। स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज एक बेहतर विकल्प होता है इस मौसम के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर आपको नाश्ते में स्प्राउट्स का एक बॉल मिल जाए तो वो एक कंप्लीट मील भी होता है और जो आपको पूरा दिन एनर्जी से, एक ऊर्जा से भर के रखता है। और साथ ही साथ ये पोषण से भरपूर तो होते ही हैं जो अंकुरित अनाज होते हैं, तो इनकी इस खासियत को देखते हुए अंकुरित अनाज को अगर सुपर फूड कहा जाए तो वो कोई दोहराए वाली बात नहीं होगी। और कहा भी जाता है कि स्प्राउट्स खाना जो है वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। सबसे खास बात ये कि इनमें जो प्रोटीन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और फाइबर भी होते हैं इन अंकुरित अनाजों में, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और एक उम्र के साथ हमें अपने डाइट में, अपने भोजन में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो जो हमारा वियर टीयर होता है कोशिकाओं का, यानी कि जो हमारी कोशिकाएँ बनती बिगड़ती हैं उनको रीजनरेट करने में, उनके पुनर्निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। अंकुरित अनाज में आप मूंग दाल को अंकुरित करके खा सकते हैं, मोठ दाल को खा सकते हैं, चना, काला चना भी बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है, क्योंकि इनमें हाई लेवल का फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ स्प्राउट्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो बढ़ती है। और सबसे खास बात यह है श्रोताओं कि वेट लॉस की इच्छा रखने वाले लोग इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती है। जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि फाइबर से भरे हुए होते हैं, तो वेट लॉस जर्नी में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायता करने में ये काम आ सकते हैं। और क्योंकि फाइबर आप जितना खाएंगे तो आपको भूख कम लगेगी और आपका वजन कम होता जाएगा। और ज़रूरी बात यह कि अंकुरित अनाज ब्लड शुगर लेवल को सही रखने में भी मदद करते हैं। अंकुरित अनाज में प्रोटीन तो है ही है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी है जो दिन भर शरीर में एनर्जी बनाए रखते हैं। तो देखा है ना कमाल कि ये अंकुरित अनाज, तो आज से ही अपनी डाइट में अंकुरित अनाज को जगह दें और पाएं एक बेहतर सेहत।

हीर रांझा फिल्म से आप ये गीत सुन रहे हैं, आवाज़ है लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, वक्त हो गया है मेरे चलने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त, और इस वादे के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शन

0: में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रूपये से लेकर 53.50 रूपये तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President Oo Mae Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar President arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
0: The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He's

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में हम याद कर रहे हैं एक ऐसी गायिका को जिन्होंने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब लता मंगेशकर का सितारा बुलंदी पर था। आज हम सुमन कल्याणपुर की बातें करने वाले हैं, साथ ही सुनेंगे उनके गाए कुछ बहुत ही खूबसूरत गीत।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में जब जब फूल खिले फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना बिल्कुल अभी। दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को हुआ था। उनके जीवन का एक बहुत ही लंबा वक्त ढाका में बीता, लेकिन उनका जो पैतृक गाँव है वो कर्नाटका में है, जिसका नाम है हेमाड़ी। वैसे शायद आप जानते हों कि सुमन कल्याणपुर को बचपन में सुमन हेमाड़ी नाम दिया गया था और बाद में उनकी शादी मुंबई के रामानंद कल्याणपुर से हुई, जिसके बाद उन्हें सुमन कल्याणपुर के नाम से जाना जाने लगा। और भी कई बातें हैं जानी अनजानी उनके बारे में बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ उनके गाए बहुत ही खूबसूरत गाने सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फर्स्ट लव फिल्म का ये गीत आपने सुना बिल्कुल अभी आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर की बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से उनके करियर की शुरुआत हुई। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर की जो परवरिश है वो एक बेहतरीन माहौल में हुई। उन्हें गाने का शौक था, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा दिलवाई। सुमन कल्याणपुर ने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नारंग से संगीत सीखा। वैसे ये जानने के बाद शायद आपको हैरानी हो कि सुमन कल्याणपुर को संगीत में करियर नहीं बनाना था, वो बस सीखना चाहती थी संगीत, क्योंकि उन्हें तो चित्रकार बनना था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि संगीत सीखते सीखते उन्हें सुर और ताल से मोहब्बत हो गई और उनका झुकाव पूरी तरह से संगीत की तरफ हो गया।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: सीमा रेखा के बाहर चौका।
1: मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सुमन कल्याणपुर को गायिका बनने के लिए अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा। मसला सीखने और गाने का नहीं था, बल्कि मसला था परिवार की तरफ से इजाजत मिलने का। उनके परिवार में संगीत सीखने पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन पब्लिक के सामने गाना गाना बिल्कुल मना था। सुमन शुरू से ही बहुत अच्छा गाती थी। अब ऐसे में उनके किसी जानने वाले ने उनका नाम आकाशवाणी में सुझा दिया और यहीं से रास्ता बना फिल्मों में गाने का।

ये गाना कभी भी आप शाम के वक्त सुनिएगा, आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा इस गाने में। वैसे तो इसे कभी भी सुन सकते हैं, सुबह भी अच्छा लगता है, दोपहर में भी अच्छा लगता है। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। शगुन है फिल्म का नाम जिससे इस गीत को लिया है मैंने आज, और बहुत ही प्यारा गीत है ये। फिल्म ये 1964 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर के करियर के बारे में, कैसे वो आगे बढ़ीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके परिवार में सख्त मनाही थी पब्लिक में गाने की, लेकिन रास्ता बनता है, जहां चाह होती है वहां राह भी मिलती है। तो दोस्तों, आकाशवाणी से उन्हें गाने का न्योता मिला। इसके बाद सुमन कल्याणपुर के परिवार ने उन्हें परमिशन दे दी इस दिशा में आगे बढ़ने की। ये साल 1952 की बात है। यहां तो जैसे किस्मत इंतजार में थी, आकाशवाणी पर गाने के तुरंत बाद सुमन को एक मराठी फिल्म में गाने का मौका मिला। फिल्म का नाम था शुक्राची चांदनी। गाने लोकप्रिय रहे, जिन्हें सुनने के बाद उस जमाने के जाने माने फिल्मकार शेख मुख्तार ने सुमन को मंगू नाम की हिंदी फिल्म में गाने के लिए बुलाया। सुमन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह से सुमन कल्याणपुर हिंदी सिनेमा से जुड़ गई। अब एक गाना इस प्रोग्राम में मैं जोड़ने वाली हूँ, आपको सुनाने वाली हूँ। ये एक ऐसा गाना है जो ख़ास तौर से सुमन कल्याणपुर के लिए याद किया जाता है। उनका एक आइकॉनिक गाना है, नूर महल फिल्म से। वैसे आप समझ गए होंगे कौन सा गाना है।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में एक और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, मोहब्बत मोहब्बत इसी को कहते हैं फिल्म से। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। सुमन कल्याणपुर ने अपने दौर के करीब करीब हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया। उन्होंने शंकर जयकिशन, रोशन, ओपी नैयर, एसडी बर्मन साहब, एन दत्ता, हेमंत कुमार और गुलाम मोहम्मद आदि के साथ यादगार गीत रिकॉर्ड किए। हिंदी फिल्म संगीत से जुड़ी कई हस्तियां सुमन कल्याणपुर को बहुत पसंद करती थीं। तलत महमूद तो उनसे खासे प्रभावित थे। वैसे सुमन कल्याणपुर खुद लता मंगेशकर की प्रशंसक रहीं और मोहम्मद रफ़ी उनके पसंदीदा सिंगर रहे। वैसे मोहम्मद रफ़ी के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा 60 गीत गाए हैं।

हम भी यूं ही प्यार करते रहेंगे सुमन कल्याणपुर को. दोस्तों 1964 में रिलीज हुई फिल्म अप्रैल फूल से ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में.

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की पहली तारीख व दिन है सोमवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्री तेंजिन दोर्जे, मोनपमद घोषक श्री थुतन टाशी, तकनीकी अभियंता श्री तानिंग तको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अंटू कुमार दास और शिखा डिका, और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी चटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: 1,79,694 candidates who appeared for the exam on the 17th of last month. 56,880 candidates have qualified, including 10,107 females. Shubham Kumar from the IIT Delhi zone secured the first rank. On to sports. In the 22nd Asian Under-20 Athletics Championships, India delivered a historic campaign, finishing second in the standings with 19 medals comprising 10 gold, 5 silver and 4 bronze in Hong Kong. The runner-up finish marked India's best ever performance at the Continental Track and Field Championships outside home soil. A total of 48 Indian athletes, 30 men and 18 women, competed in the tournament, held from the 28th to the 31st of last month. The championships are serving as a qualifying event for the World Under-20 Athletics Championships, scheduled to be held at Oregon in the United States in August. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent of Asian Under-20 Athletics Championships on winning 19 medals. In a social media post, Mr. Modi said this outstanding performance reflects the determination and excellence of India's young athletes. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze at Da Nang in Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in 73-kilogram category clinched gold medals. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Tripura, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and West Madhya Pradesh today. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Rajasthan till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Hlaing hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under-20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Sir Firozi. मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं ह्लाइंग ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं ह्लाइंग के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है म्यांमार भारत

0: नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान एक महीने तक चलेगा।
1: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
1: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
3: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रूपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रूपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रूपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रूपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
5: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश

0: कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे विभिन्न कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। गीत को संगीत से संवारा है अरुण पौडवाल ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे किंगलिंग किंगलंग, जोशंग लोंगफी, कोचुंग लोंगरी, लीसा मोसंग और मुंगतंग मोसंग की आवाज में चंतांगसा आधुनिक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे किंगलिंग किंगलंग जोशम लोंगफी कोचोंग लोंगरी लीसा मोसांग और मुंगतांग मोसांग की आवाज में चेनतांग सा आधुनिक गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 9वीं कक्षा की छात्रा कुमकुम कुमारी से छात्रों के लिए सतत जीवन विषय पर चंद शब्द।
1: नमस्कार। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित तेने कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं कुमकुम कुमारी पीएम श्री जनवी तवांग 9वीं की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय छात्रों के लिए सतर्क जीवन। कल की धरती छात्रों के भविष्य की शुरुआत है। सतर्क सोच ही आज की सबसे बड़ी सौगात है। आज की तेज रफ्तार और अभौकितवादी दुनिया में सतर्क जीवन अपनाना समय की जरूरत बन गया है। छात्र समाज का वह वर्ण है जो भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए यदि वे छात्र सतर्क जीवन शैली अपनाएं तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। सतर्क जीवन का अर्थ केवल पर्यावरण की रक्षा करना नहीं है, बल्कि संतुलित, जिम्मेदार और संसाधनों का सही उपयोग करते हुए जीवन जीना है। एक छात्र अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके सतर्क जीवन की ओर कदम बढ़ा सकता है। सबसे पहले संसाधनों का संरक्षक आवश्यक है। छात्र पानी और बिजली का उपयोग सोच समझ कर उपयोग कर सकते हैं। बिना जरूरत के लाइट, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रख सकते हैं। कागज की बचत के लिए डिजिटल नोट्स का उपयोग और दोनों तरफ लिखने की आदत अपनाई जा सकती है। पर्यावरण अनुकूल की आदतें विकसित करनी जरूरी है। प्लास्टिक की बोतलें और थैलियों के बजाय कपड़े के बैग और स्टील की बोतल का उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने की आदत न केवल पर्यावरण के लिए अच्छी है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। संतुलित जीवन शैली में सतर्क जीवन का महत्व है। समय संबंधन, नियमित अध्ययन, योग और व्यायाम तथा पर्याप्त नींद से छात्र मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ छात्र ही समाज के लिए सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। छात्र को जरूरत जागरूकता फैलाने की भूमिका भी निभानी चाहिए। वे अपने मित्रों, परिवार और समाज को सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में

0: बता सकते हैं। इस प्रकार यदि आज से ही सतर्क जीवन शैली अपनाए तो वे न केवल अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे बल्कि पृथ्वी और समाज को भी एक बेहतर दिशा देंगे। छात्र समाज का भविष्य होते हैं, इसीलिए उनकी भूमिका सतत विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। छात्र छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना भी सतत जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। छात्रों को स्वच्छता अभियान में भाग लेना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सतर्क जीवन अपनाना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। यदि छात्र आज से ही छोटे छोटे कदम उठाए तो वे भविष्य में बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक जागरूक छात्र ही एक सुरक्षित, स्वस्थ और हरित पृथ्वी का निर्माण कर सकता है। धरती बचाओ, पृथ्वी सजाओ, छोटे कदम उठाओ, भविष्य बनाओ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 9वीं कक्षा की छात्रा कुमकुम कुमारी से छात्रों के लिए सतत जीवन विषय पर चंद शब्द। इसके साथ कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे ज्योति नूरान की आवाज में फिल्म टाइगर जिंदा है से। शब्द रचना है इरशाद कामिल के, वह संगीत है विशाल और शेखर का।

अभी आपने सुना फिल्म आजा नचले से गीत सुनिधि चौहान की आवाज में गीतकार थे पीयूष मिश्रा व संगीता सलीम सुलेमान का। आप सुन रहे कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे समीर रंजन द्वारा शब्द फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से। मोहम्मद फैज की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा आदेश श्रीवास्तव ने।

फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के संगीत के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे स्वानंद किरकिरे द्वारा शब्दबद्ध फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से। श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में इस गीत को संगीत से सवारा है शांतनु मैत्रा ने।

अभी आपने सुना फिल्म बेवकूफिया से गीत मोहित चौहान और श्रेय घोषाल की आवाज में गीत करते अन्विता दत्त गुप्तन का व संगीत था रघु दीक्षित का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे मोहित चौहान और तरन्नुम मलिक की आवाज में फिल्म एकता टाइगर से। कौसर मुनीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है सोहेल सेन ने।

0: mais.
1: अभी आपने सुना फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से ये गीत सुनिधि चौहान और मोहित चौहान की आवाज में। गीतकार थे जयदेव साहनी व संगीत था सचिन जिगर का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे शब्बीर अहमद द्वारा शब्द फिल्म सनम तेरी कसम से। अरिजीत सिंह की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे पापोन की आवाज में फिल्म दम मारो दम से। शब्द रचना है जयदीप सहनी की व संगीत है प्रीतम का।

फिल्म दम मारो दम किसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राख रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से शहनाई वादन। राग है मारो बिहाग व तबले पर संगतिया है। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा APSTS के 50 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह तिरप जिले के खोंसा में संपन्न। समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय तामता ने शिरकत की। मई महीने में सकल GST संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। PM स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के उपराष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून को दाखिल किए जा सकते हैं। आगामी 18 जून को मतदान और मतगणना एक ही साथ की जाएगी। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्र दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा है कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान से 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी।

0: श्री गोयल ने कहा कि इससे बाजार रोजगार बढ़ेंगे और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा APSTS के 50 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह तिराप जिले के खोंसा में संपन्न हुआ। समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय तामता ने शिरकत करते हुए तिराप जिले के लिए APSTS की 3 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने परिवहन विभाग और APSTS को जनता की सेवा के 5 दशक सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि APSTS दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों सहित अनगिनत समुदायों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता रहा है। उन्होंने आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मजबूत सड़क अवरचना अवसरों के द्वार खोलने और लोगों की आजीविका में सुधार लाने की कुंजी है। केंद्र मंत्री ने यह भी जानकारी साझा की है कि भारत सरकार केंद्र सड़क और अवसंरचना निधि CRIF तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHAIDCL द्वारा संचालित कई प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने की 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई के महीने में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्र GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रहा था। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: होटल, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्य LPG सिलेंडरों की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमत 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए हो गई है। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यवसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। वही चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,283 रुपए हो गई है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान ने रडार में और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की है। जवाबी कुवैत ने कहा है कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान और अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: मलेशिया ने 16 वर्ष तक कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों का आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनी पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग जैसे चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों से भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
1: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूँ। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूँ।
0: हांगकांग में 22वीं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Hage Ani. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U Min Aung Hlaing held bilateral talks in New Delhi today. The talks aimed to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, came up for discussions during their talks. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. In an article published in a national daily, Mr. Goyal said the Comprehensive Economic Partnership Agreement immediately gives Indian exporters 100% duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines covering 99.38% of exports. This marks a dramatic improvement over the pre-CEPA system that allowed only 15.3% of India's exports to enter Oman at zero duty. The minister said that goods from India that currently face a 5% import duty in Oman will become more competitive. Mr. Goyal added that the agreement will significantly benefit the country's students, artisans, women, farmers, fishermen and micro, small and medium enterprises by opening new markets, boosting exports, attracting investments and accelerating job creation. The second India-Australia Defence Minister's dialogue is underway in New Delhi. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles are co-chairing the dialogue. During the dialogue, both ministers will review the progress in bilateral defence cooperation and identify new avenues for collaboration. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, promote stability and security in the Indo-Pacific region, and identify new areas of collaborations in defence and security. In his opening remarks, Mr. Singh said the defence ties between India and Australia have strengthened significantly. Mr. Miles said, Australia and India are doing a lot of work in the maritime domain. He said both nations have never been more strategically aligned. Gross goods and service tax collections rose 3.2% to over 1,94,000 crore rupees last month on improved supplies of goods and services and continued expansion of collection from imports. The gross GST collection in May last year was 1,88,000 crore rupees. Gross central GST collections from domestic transactions last month stood at 37,397 crore rupees. The West Bengal cabinet headed by Chief Minister Shuvendu Adhikari was expanded today with the induction of 35 new ministers, taking the strength of the Council of Ministers to 41. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to 35 BJP MLAs at a swearing-in ceremony held at Lok Bhavan in Kolkata. Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme completed 6 years today. PM Swanidhi has enabled millions

0: मीडियम वेव किलो हर्ट्स क्या चिल्लाने गली थी मीटर क्या नहीं खेल चीनीस का उज आकाशवाणी तवांग बुर संगे संगमा नब देख सुजल लंगाउनी दा नमी गो तो आकाशवाणी तवांग देश नुप देख मनपक लेरम बनम गो जुदुर लेरम संगन लंगे छामा शिल नदा छे तुदन टेशी से छमरी टेशी दिलेंगे जुदुर देशी छिनुंग तुंग खलिक रोलोक छिंदा टुकबक तरिक थी बोई जलो नितोंग क्यानिन खेली चुकसुम रबने मेतालोक बोई दा शिब सकदवाक चेस चिक्रो रेजा तवी इंबुर आगाश्वानी तवंक लेरम बानंग एफएम फ्रिक्वेंसी क्यानिन ब्ली मेगाहर्स गये सन्मतों इंबुर लंगेनांग दा मन्प लेरम को दाम नम्थर लेरम चितको चुदुर देश उद लेरमा गेसे चिन्मो शिवल हसी जे नौ चेंजु चेनमो टुलकु तेंजिंग गुमेर बुचेसी मनकेगा गुरिया ट्रेशे नमु दंग सन मेजिक मार मुथिया सन नासा
1: ता शक्बा या दांग छे चोज तोपशी चांग विको ने शक्बा तोपशी तोप ने ना निवा निवा हाचांग थेम पावरफुल दे पेना चिक ने ओ दो दुगजा तिसे नसो ये ना गालशा ता ने को ती बिनांग तुक्षु इन इजिक मुनो चुजो इजिक यार सिंह वसोलो दा खमसांग से वो न्यू वसवा ताजे शंजो का मंचे उदिन दे टॉप टेम दे कोस में पावरफुल दे इजिक से दा टॉप शी न्यू वसो तो ना उदिन दे इम दा दिखवा टॉप शी नो से इजिक शक्बा दे यावो इना ता दिखवा करने दे इने शाह दे जो मुनो चुज दे जो चांमा चुज दे जो उदिन दे नो ने दा दांग आर टॉप शी कोर रब से जो डिस्कशन ऑन सर में ओरे ता टॉप शी सी सी लो ने ना ना दा चे नंबर सुन चिंबे टॉप Number soon Jimbe top in the city, Mekino in the Cadmanum. Number soon Jimbe top mention much a jube top in Jutba, same good jut by age. Shabanyaji number double the reguji na, same good jutba number double the cosum yet. The Juba Yadang, Kaigail Udna, Saruya. Is it true? Nimbukundu jube top. Nimbukundu jube top in a juba tea, yaya sooner, creduanina. Is it same megru yaya? Young Lega, Chica, Givig Java, Lega number double. Yagosu, Penadan Pesun Shusongodo, Sochugi, Miso de Marim Shinde, Dachik, Mo Dundula, the Pusin Brula, Ijig Sedinanga, Ijig Soto Neva Brula, Noina. That now same way, Juba number Dabati. Within Yagoche, Ne, Nor Nene, Penadaching or Dujun, Lega Sakazi Yabo Legic, Subsabiadan, your nome or Benatsi, Tula Noina, Sagash.

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरोखा में पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तवंग इलेक्ट्रिकल डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ पावर तवंग के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार अरुणाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी APSERC द्वारा जारी अनुवर्ती आदेश अनुसार तवंग विद्युत प्रभाग के अंतर्गत सभी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजली उपभोक्ताओं के लिए 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% मीटरिंग प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः सभी संबंधित पक्षों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे माननीय APSERC के निर्देशों के अनुसार सभी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और उपभोक्ताओं के परिसरों में नए 3-फेज मीटर और 3-फेज सिटी मीटर प्राथमिकता के आधार पर लगाए या खराब मीटरों को बदले। अतः सभी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अरुणाचल प्रदेश के मीटरिंग दल के साथ समय पर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोग करें। आपके सहयोग और समर्थन की हम अत्यधिक सराहना करते हैं। यह मीटरिंग कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू होगा। सूचना समाप्त हुआ। जरोखा में अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे तवंग मठ के गिलोंग संगी लेटा से बौद्ध भक्ति गीत का शेष भाग। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण, जिसमें आप सुन सकेंगे कृषि विज्ञान केंद्र तवंग के SMS हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता होंगी दर्जी ड्रामा। शाम 7:30 पर कार्यक्रम फौजी वायु के लिए फिल्म संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म गीत काताचल से जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में गीत, फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से उदित नारायण की आवाज में गीत और फिल्म न्यूयॉर्क से KK की आवाज में गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत फिल्म मैरी कॉम से विशाल ददलानी और सलीम मर्चेंट की आवाज में। आज रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार।

नवरात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुने हमारे केंद्र से कल यानी 2 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30

प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, जिसमें आप आनंद ले सकेंगे कुमार सानू की आवाज में चंद बांग्ला गीत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग की 11वीं ह्यूमैनिटीज की छात्रा छोरतन समूह से प्लास्टिक मुक्त जीवन का महत्व विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म अंग्रेजी मीडियम से तनिष्क सांगवी और सचिन जिगर की आवाज में गीत, फिल्म डियर जिंदगी से जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी की आवाज में गीत, फिल्म जब तक है जान से नीति मोहन की आवाज में गीत और फिल्म दोस्ताना से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की आवाज में गीत। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म तमाशा से अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज में गीत, फिल्म जब हैरी मेट सेजल से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म ट्यूबलाइट से कमाल खान, नकाश अजीज, देवनेगी और तुषार जोशी की आवाज में गीत, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से विशाल ददलानी और शेफाली अलवार्स की आवाज में गीत, फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से नीरज श्रीधर और सुजैन डीमेलो की आवाज में गीत, फिल्म मुन्ना माइकल से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान की आवाज में गीत, फिल्म बुलबुलैया 2 से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में गीत, फिल्म केदारनाथ से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में गीत, फिल्म सूर्यवंशी से अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में गीत और फिल्म द स्काई इज पिंक से अरिजीत सिंह, निखिल डिसूजा और अंतरा मित्रा की आवाज में गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राख रंग, 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नमथार कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री थुतन टाशी से, 5:35 पर कार्यक्रम दांगपोक सामा और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे ग्यांगोंग अनि गोनपा की अनि तुतन छुजंग उमजे और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। कल शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे एलडी स्कॉलर्स होम स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा दुंडुप वांगमुदोमगे से एक कविता, कविता का शीर्षक होगा आइसक्रीम मैन। 7:11 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म बेमिसाल से चंद गीत, जिसमें पहला गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर और आर डी बर्मन की आवाज में, दूसरा गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाटकर की आवाज में और तीसरा गीत आप सुन सकेंगे किशोर कुमार की आवाज में। कल शाम 7:25 पर कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग, 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज। शाम 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत, कार्यक्रम क्वामी तराने के अंतर्गत फिल्म फाइटर्स से विशाल ददलानी और शेखर रावजियानी की आवाज में। कल रात्रि 8:00 आप सुन सकेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि ठीक 9:00 न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरूखा यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

आकाशवाणी तवांग लाइंगे सोमा नबदक छुजे ग्रो कुन कर्म खनोनी द शेदुन लेरम चिको चुदुर देश उद लेरमा टुलकु टेंशन गुरमे रुब छसी थुपतिन शे डब्लिंग फाउंडेशन कक छोखंग नेगा दब सुम बक्सेस चिलंग चुर कोचुया तंग सगदबा छस चिलंग सक लेथि रिंग केसे छेनबो शिवलासी जेनौ छेनजु छेनमो मार मनके का गुरिया त्रिशे नंगया दुसुक छुजे तवंग गुनबक केलोंग संगे लेटा से कोठिनो गेंदुनबा निंग छेजुगन मिगे नंगे लामजुबक छोगनिंग छोफयु निंग इजिक छुजे रुमबचे कुसि युनरिंग तेनिक थोका तेजु फयु दाउनोप शेदुन लेरमा सनमजिक मार मुथिया सन्नंगसा

Lola,

Lalo

我说了那么

0: agashwani tawang deshnu tu mun bagle rim bana chajau du tu thaye jamun du su jini sundu ta ju ju je
1: kar आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के SMS यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर के डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से सब्जियों में रोग और कीट प्रबंधन विषय पर भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दर्जी ड्रामा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में एक बार फिर कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी जी को आमंत्रित किया है। तो डॉक्टर अभिमन्यु जी, आपका एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
2: धन्यवाद
1: जी। तो श्रोताओं, आज हम डॉक्टर अभिमन्यु जी के साथ चर्चा करेंगे सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन विषय पर। डॉक्टर अभिमन्यु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि रोग और कीट में क्या अंतर है, तथा किसान यह कैसे पहचान सकते हैं कि फसल में रोग से प्रभावित है या फिर कीटों से?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रोग जो होते हैं ना, प्रमुख रूप से फंगस से होते हैं। फंगस हिंदी में कवक कहते हैं। और इनका जो काजल एजेंट होते हैं वो नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते, बहुत ही माइक्रो लेवल पर इनको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ रोग निमेटोड्स से भी होते हैं, वो भी बहुत टीनी साइज में होते हैं, वो मिट्टी में होते हैं। और कोई भी फसल के संपर्क में आते हैं तो फसलों में बहुत सारे सिम्टम डेवलप होते हैं, जैसे कि पत्ती लाल होती है, पीली हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, तो ये रोग हो गया। इसके अलावा कीट चूंकि आंख से देखे जा सकते हैं, कीट बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। कीट के लार्वल स्टेज ज्यादातर फसलों को नुकसान करती है, और कीट प्रमुख रूप से फसलों को किसी न किसी रूप में काटते हैं, या पत्ती को काट देंगे, होल कर देंगे। इस प्रकार का लक्षण आता है, तो इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रोग और कीट का।
1: क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियाँ बहुत सारे उगाए जाते हैं, कई बार कई लोगों को ये पता नहीं चल पाते हैं कि उनके सब्जी में कुछ तो हुआ है, अच्छी नहीं आ रही है, कुछ या पीले पड़ गए हैं या कीड़े खा गए हैं। ये तो आपने बताए, देख सकते हैं ये जो कीट से जो प्रभावित है उसे तो देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा है कि उनको पता नहीं चलता कि प्रभावित किस चीज से हुआ है या फिर इसके क्या इलाज करें, ये पता नहीं चलते हैं। तो अगर आप जैसे एक्सपर्ट हमारे इस कार्यक्रम में इन सारे चीजों का समाधान भी बताए जाए तो हमारे किसान श्रोताओं को बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। अगर हम विशेष रूप से तवांग के बारे में चर्चा करें तो तवांग में आपने देखे होंगे अब तक यहाँ पर मिर्चे बहुत लगाते हैं, चिली फार्मिंग बहुत किया जाता है, विशेष रूप से हमारे यहाँ के जो लोकल मिर्चे होते हैं वो लगाते हैं। तो मिर्चे में कई बार ये समस्या आते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं या फिर कीड़े खा जाते हैं, तो ऐसा करके बहुत सारे समस्याएं आने लग। इसको कीट से प्रभावित होते हैं, रोग से कैसे पहचाने?
2: मिर्च में प्रमुख समस्या जो है एक एंथ्रेक्नोज रोग होता है, उसके कारण होता है। ये फंगस फफूंद से होने वाला ये रोग है। इसमें क्या होता है कि मिर्च की पत्तियां ना ब्राउन कलर के होके ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जब पत्तियां में ब्राउनिश हो जाएगा, मीन्स उसका जो हरा कलर है ना वो कम हो जाएगा, तो पत्तियां कमजोर हो जाएंगी। उसमें हरा कलर को भी कोई भी पौधे में होता है, प्लांट में, क्लोरोफिल के कारण होता है। फंगस क्या करता है कि ब्राउनिश कलर होने से मतलब क्लोरोफिल को के अमाउंट को कम कर देता है, जिससे उनका फोटोसिंथेसिस से उनका जो खाना बनने की जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस वो स्लो पड़ जाती है, और पौधा हमारा कमजोर हो जाता है, जिससे हमारा मिर्च का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। पत्तियों के अलावा ये मिर्च की फली लगी है तो उसमें भी भूरे भूरे ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं, जो कि बाद में काले भी हो जाते हैं और बड़े स्पॉट में हो जाते हैं। तो ये प्रमुख सिम्टम है, प्रमुख लक्षण है पहचान का कि ये हमारा एंथ्रेक्नोज रोग लगा हुआ है। इसका कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है हम ऑर्गेनिक तरीके से इसका कंट्रोल करें, एक केमिकल का प्रयोग करके करें। तो जनरली तवांग में या पूरे अरुणाचल में हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि केमिकल का प्रयोग न हो तो ठीक है। तो ऑर्गेनिक तरीके से क्या है कि एक बीटी पाउडर होता है, बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये बायो कंट्रोल एजेंट होता है। इसका 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में, 1 ग्राम पर लीटर वाटर डोज हिसाब से, इसको जहां हमारा एंथ्रेक्नोज बीमारी लगी है वहां हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। और 10 दिन बाद दोबारा हम इसका स्प्रे बीटी स्प्रे करना चाहिए, हमारा ये जो पत्तों का भूरा कलर है ये सब कम हो जाएगा। यदि रोग बहुत ज्यादा किसी पौधे में ज्यादा लगा है तो हम अपने खेती से उस पौधे को उखाड़ के खेत

0: इतने दूर गड्ढा खोद के उसमें दबा के ऊपर से मिट्टी ढक दें, क्योंकि नहीं तो फंगस से पूरे खेत में ये रोग फैल सकता है।
1: जी, और वैज्ञानिक तरीके क्या हो सकते हैं मिर्च के जो बीज बुआई से पहले जो हम किए जा सकते हैं?
0: हाँ, सीड ट्रीटमेंट की जैसे बात आती है कि मिर्च में हम जब नर्सरी में बीज लगाते हैं उस समय हम मिर्ची के बीजों को ट्रीटमेंट कर दें और नर्सरी में लगाएं, तब हम उनमें कुछ डिसीज रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास दो तरीका है, एक है ऑर्गेनिक तरीका, एक है इनऑर्गेनिक तरीका। दोनों लाभदायक है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग केमिकल से डरते हैं

0: कुछ डिसीज रेसिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास दो तरीका है, एक है ऑर्गेनिक तरीका, एक है इनऑर्गेनिक तरीका। दोनों लाभदायक है, क्योंकि जहां तक हम लोग केमिकल से डरते हैं, केमिकल से डरना चाहिए, लेकिन हर केमिकल का एक रेसिडुअल इफेक्ट होता है, एक टाइम बाउंडेड होता है। अधिकतम केमिकल 20 से 25 दिन बाद खत्म हो जाते हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाविस्टीन एक फंजीसाइड आता है, फंगस को मारने वाला, 1 ग्राम दवा से हमारा 1 किलो तक बीज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या करना है कि उसके बीज के ऊपर चारों ओर दवा को अच्छे से छिड़क के हल्का सा पानी होकर के और मिक्स कर देना चाहिए, ताकि वो बीज पर वो दवा चारों ओर से अच्छे से लिपट जाए, तब हमको खेत में डालें। तो क्या होगा कि उसके ऊपर एक कोटिंग टाइप में हो जाएगी, फंगस जो अटैक करते हैं, तमाम प्रकार की बीमारी को उत्पन्न करते हैं, उनका अटैक कम हो जाएगा। दूसरा है बायो कंट्रोल तरीके से, उसके लिए ट्राइकोडर्मा से भी हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, मतलब अगर 1 केजी मिर्च का बीज है तो 5 ग्राम, इसको भी इसी तरीके से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक बायो एजेंट है, मिर्च के बीज पर चारों पाउडर को छिड़क के हल्का सा पानी मार के मिक्स कर देंगे तो ये बीज में चिपक जाएगा। फिर हम बीज को नर्सरी में डालेंगे तो हमारा बीज हेल्दी उगेगा, जो मिट्टी में तमाम प्रकार के फंगस होते हैं अटैक करते हैं, उससे हमारे नर्सरी में जो बीमारी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा नर्सरी के दौरान ये हम उपयोग इसका कर सकते हैं।
1: अगर सब्जियों में कीटों से प्रभावित होने वाले हैं तो उसके शुरुआती लक्षणों को हम कैसे पहचाने, एक किसान उसे कैसे पहचाने?
0: कीट तो अलग अलग स्टेज पर लगते हैं, जैसे कि हम कोई भी फसल खेत में लगाएं, तो एक कटुआ वो क्या करता है, जैसे मिर्चा लगाएं, गोभी लगाएं खेत में, नर्सरी से उखाड़ के मेन खेत में लगाएं, तो पौधे नरम होते हैं। वो क्या करता है कि मिट्टी की सतह से बराबर में रात में निकलता है मेनली और काट देता है, तो जिससे हमारा लगाया वाला ही पौधा कट जाएगा तो आगे प्रोडक्शन तो होगा नहीं। के ट्रीटमेंट के लिए भी दो तरीका है, या तो नीम बेस्ड कुछ ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब कंट्रोल करने वाला निम्बी सिडीन वगैरह होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, या किसान अगर केमिकल वाला रास्ता अपनाए तो उसके लिए फोरेट होता है, पेस्टिसाइड होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। फोरेट महीन दानेदार केमिकल होता है, उसको खेत में जब हम पौधे लगाते हैं स्प्रेड कर देने से जो कटवर्म होता है वो मर जाता है, तो हमारी खेती बच जाती है।
1: और जैसे कि तवांग एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं, तो क्या बदलते मौसम से हमारे जो सब्जियाँ हम उगाते हैं उस पे कोई प्रभाव पड़ते हैं?
0: बारिश का मौसम ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, गर्म ज्यादा होता है, उस समय जो कीट होते हैं उनका प्रकोप ज्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी स्पेशली जब गर्म मौसम और ह्यूमिडिटी में कीटों का मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है, और कीटों का मेनली लार्वल स्टेज 90% केसेज में लार्वल स्टेज डैमेज करती है हमारे खेत में। जो फीमेल फ्लाई होती है जो भी कीट की, वो एग लेइंग करती है, एग लेइंग के बाद अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग ड्यूरेशन होता है, कोई 1 हफ्ता बाद, कोई 10 दिन बाद वो लार्वल स्टेज में आ जाते हैं। वही लार्वल स्टेज हमारे खेती को डैमेज करते हैं, कभी वो पत्ती पर रेंगते हुए खेतों में देखते हैं, हरे हरे होते हैं, कोई भूरे कलर के होते हैं, वो पत्ती पर जाते हैं, उनका कोई क्लोरोफिल समाप्त कर देता है, मतलब क्लोरोफिल मतलब हरा कलर जो पत्तियों का होता है क्लोरोफिल से होता है, वो खा के समाप्त कर देता है। कभी क्या होता है कि पत्ती पूरा जाली जाली जैसा बना देता है। गोभी में स्पेशली पत्ता गोभी में देखिए, फूल गोभी में वो हरे हरे डायमंड नाम से कीड़ा होता है, डायमंड बैक मॉथ, वो क्या करता है, वो उसकी लार्वल स्टेज क्या होती है, वो फूल गोभी में जाके छेद कर देता है अंदर, तो वो भी हमारा नुकसान करता है। फूल गोभी में भी वही लार्वल स्टेज होती है, वो भी नुकसान करती है, तो उसका अलग से स्मेल, गंदी स्मेल आती है और फूलगोभी का क्वालिटी खराब हो जाता है। विभिन्न प्रकार से अलग अलग किस्मों में, बैगन में देखिए, बैगन में फ्रूट फ्लाई होती है, वो अंडे देती है, वो अंदर जब बैगन से उनका लार्वल स्टेज होता है, बैगन जब मैच्योर होता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो कि खाने के लिए जब हम काटते हैं तो दुर्गंध आता है और हमारी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ऐसे बहुत प्रकार से फल में भी होता है, सब्जियों में भी होता है, अवस्थाएं होती है कीटों की, स्टेजेज होते हैं और वो फसल को नुकसान करते हैं।
1: हमारे ये चर्चा जो है सब्जी फलों में रोग एवं कीटों से प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, इसी पर हो रहे हैं, तो मैं ज्यादातर यहाँ पर जितने ज्यादा हर सब्जियाँ उगाते हैं इस पर केंद्रित करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी इस समय बहुत सारे लोग मिर्चे लगाते हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगी, तो जब उसमें फल लगने के समय आते हैं तो जो मिर्चे उसमें लगते हैं उसमें कई बार मिर्चे जो है सिकुड़ जाते हैं, कभी उसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं, कई बार फीके से रंग हो जाते हैं, गीले से हो जाते हैं, या फिर पानी से बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होते हैं? अगर इन सारे जो समस्या होते हैं इनको रोकथाम करने के लिए अभी हम क्या तरीका अपना सकते हैं?
0: वही हम लोग जैसा कि अभी डिस्कस भी किए थे कि कुछ में कुछ कीड़े से होता है, कीट से होता है, कुछ बीमारियों से होता है, तो कीट में

0: भी हमने जिक्र भी किया था कि जैसे डायमंड बैक मॉथ होता है,
1: हाँ हाँ
0: इसका
1: हाँ
0: लार्वा जो है हरे कलर का होता है और पत्तों को क्लोरोफिल को मतलब पत्ते के हरा पौधा को खा जाता है, जाली जैसे जैसे दिखता है। ये हमारा मिर्च में भी होता है, गोभी वर्गीय फसलों में भी ये होता है, बैगन में भी लगता है ये। तो इसका कंट्रोल के लिए हम ऑर्गेनिक तरीके से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। नीम बेस्ड जो एक हमारा प्रोडक्ट होता है, निम्बिसाइड या निम्बिसिडीन, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग प्रोडक्ट नाम है। इसका डोज जो है 5 ml लिक्विड 1 लीटर पानी में, इस डोज से 5 ml निम्बिसिडीन पर लीटर वाटर हम स्प्रे करेंगे। जब भी हमको खेत में कीट दिख रहा है और उसका एक हफ्ता बाद फिर से दोबारा हम स्प्रे कर दें, तो हम ऑर्गेनिक तरीके से हम इन कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी खेती को बचा सकते हैं। इसके अलावा एफिड्स आते हैं। एफिड्स का प्रकोप जब ज्यादा गर्मी वाला मौसम होता है तब होता है। एफिड क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत ही छोटे, जैसे कि सरसों के दाने के बराबर। वो क्या करते हैं, पत्तियों के निचली सतह पर होते हैं और वो पत्तों का रस चूस लेते हैं। जब पत्तों का रस चूस लेंगे तो पौधे हमारे कमजोर हो जाएंगे, फिर उनमें फोटोसिंथेसिस वगैरह रेट कम हो जाएगा, मतलब पौधों की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो कम हो जाएगी, तो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी है उनका डेवलपमेंट कम हो जाएगा और हमारा खेती को नुकसान हो जाएगा। इसके लिए भी हम निम्बिसिडीन का उपयोग कर सकते हैं, 5 ml प्रति लीटर वाटर इस रेट के हिसाब से। कुछ कटवर्म्स हमने बताया था आपको, जो कि खेतों में जो पौधे अंकुरित हो रहे हैं वो, या नया रोपे गए पौधे, उनको नरम नरम पौधों को जमीन की सतह से काट देते हैं, उसमें भी हमारे खेती नुकसान हो जाता है। तो के लिए तो एक बीटी पाउडर होता है, बैसिलस थुरेंजिसिस, एक ये बायो पेस्टिसाइड है। उसका होता है कि 1 kg प्रति एकड़ की दर से, एकड़ तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर छोटा एरिया है तो 1 gram बीटी पाउडर 1 liter पानी, 1 gram पर लीटर वाटर। इस डोज से हम अगर इसको स्प्रे कर दे तो हम बीटी काटन को बायोलॉजिकल तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी।
0: बोरर्स होते हैं जो कि छेद कर देते हैं फल में, पत्तियों में, पौधों के तने में, स्टेम में छेद कर देते हैं, तो हमारे सब्जियों के पेड़ कमजोर हो जाएंगे, फ्रूट्स क्वालिटी खराब हो जाएगी। स्पेशली बैगन में बोरर का बहुत अटैक होता है, टमाटर में बोरर्स का अटैक होता है, तो हमारी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। तो इसमें भी जो हमने बताया कि बायो तरीके से अगर करना चाहें तो बीटी पाउडर का स्प्रे, 1 gram बीटी पाउडर 1 liter पानी में मिला के स्प्रे करें। एक बार में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो 7 से 8 दिन बाद दोबारा हम स्प्रे कर सकते हैं।
1: पत्ता गोभी या फूल गोभी को लेकर चर्चा करें तो उनमें ऐसा एक बहुत असामान्य सा बाद में वो जाकर आकार लेते हैं और उनके जड़ों में एक गांठ जैसे पाए जाते हैं।
0: हाँ, ये रोग है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक रॉट। एक ब्लैक रॉट होता है, एक क्लब रॉट होता है। पहले क्लब रॉट में आते हैं। क्लब रॉट में क्या होता है कि गोभी वर्गीय फसलों की जड़ें फूल जाती, गेंदा के आकार के बॉल के शेप में हो जाती हैं। इससे भी क्या होता है कि पौधा कमजोर हो जाता है और हमारा प्रोडक्शन कमजोर हो जाता है, पौधा फूट के उसमें जड़ें फट जाती हैं, तो नीचे से न्यूट्रिएंट्स वाटर अपटेक कम हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो हमारा प्रोडक्शन स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएगा। हमको क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा आता है, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है। इसका हम 10 gram प्रति लीटर वाटर की दर से, जहाँ ऐसा दिख रहा है कि पौधों गोभी वर्गीय फसलों की में क्लब मतलब गोल गोल उनकी जड़ें हो रही हैं, तो वहाँ हमको स्प्रे कर देना चाहिए। ब्लैक रॉट की जो बीमारी आती है, दूसरी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें क्या है कि जड़ों अंदर से खोखली हो जाती हैं, सड़ने लगती हैं, और इसका एक बहुत अच्छा लक्षण पत्तियों पर दिखता है। गोभी वर्गीय पत्तियों पर अंग्रेजी के वी, पीले रंग का वी आकार बन जाता है गोभी वर्गीय फसलों में। अगर अंग्रेजी का वी आकार अगर गोभी वर्गीय फसलों में हमें दिखे, हमको ये समझ जाना है कि इसकी जड़ें में ब्लैक रॉट है, एक फंगस है, वो अटैक कर दिया है,
1: पत्तों पर दिखेंगे।
0: हाँ, ये पत्तों पर दिखेंगे। इसका भी है कि बीटी काटन का छिड़काव करना चाहिए, बायो कंट्रोल एजेंट जो है बैसिलस थुरेंजिस, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका स्प्रे करना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि जहां एक बार में ब्लैक रॉट का अटैक दिखे, वहां दोबारा हमको गोभी की फसल 3 साल तक नहीं लेनी है, फसल चक्र अपनाना चाहिए। बहुत खतरनाक बैक्टीरिया ये होता है, प्लस क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाना है। फिर एक है हमारा डाउनी मिल्डू आता है, पीला झुलसा रोग। इसमें क्या है कि हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह में भी हमारी ये बीमारी आती है। इसमें क्या है कि निचले पत्ते पर पीले पीले रंग के धब्बे मिल जाते हैं। जब पीले पीले धब्बे हो जाएंगे तो हमारे फसल कमजोर हो जाते हैं, इनकी वजह से हमारे जो पत्तियां झुलस भी जाती हैं, मुरझा भी जाती हैं। तो इसमें भी हमको ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए, 10 gram प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें स्प्रे करने से हम पीला झुलसा रोग मतलब डाउन मिल्डो को कंट्रोल कर सकते हैं।

0: इसके अलावा एक और हम जरूरी चीज ऐड कर दें कि झुलसा रोग ब्लाइट का भी प्रकोप बहुत होता है यहाँ। हमने जो देखा है आलू में प्रमुख रूप से लग रहा है, बैगन में भी लग रहा है और टमाटर में भी लग रहा है, इनमें मेजर है और मिर्च वगैरह में माइनर है। तो झुलसा रोग में क्या होता है कि पत्तियां जो हैं, चाहे आलू की हो चाहे टमाटर की हैं, पत्तियां किनारे किनारे से सिकुड़ जाती हैं और सूखने लगती हैं। पहले ब्राउन कलर की होंगी फिर बाद में काले रंग के हो जाते हैं और ज्यादा प्रकोप होने से आलू का खेत हो या बैगन का टमाटर का खेत हो दिखेगा कि पूरा पौधे एकदम मर से गए हैं, झुलस से गए हैं, ऐसा ज्यादा प्रकोप होने ज्यादा अटैक होने पर ब्लाइट का ऐसा दिखेगा। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके कंट्रोल के लिए भी हमको ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना चाहिए 10 ग्राम प्रति लीटर वाटर की दर से ऑर्गेनिक तरीके से, और इसमें केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि ब्लाइट कंट्रोल ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हो रहा है तो। क्योंकि ब्लाइट कंट्रोल 10 दिन में ही बहुत तेजी से, कहने का मतलब हमारे फसलों को मार देता है, एकदम खत्म कर देता है। क्योंकि जो बायो कंट्रोल एजेंट है बायो तरीके से थोड़ा स्लो प्रोसेस में इनका प्रभाव होता है। तो अगर किसान चाहें तो ब्लाइट कंट्रोल के लिए एक केमिकल का भी सजेशन कर सकते हैं, मैंकोजेब एक रसायन होता है, फंजीसाइड होता है, मैंकोजेब कॉपर का फंजीसाइड होता है, 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम इसको मिला करके और हम स्प्रे करें। एक चीज बहुत जरूरी है, जब भी हम खेतों में कोई भी दवा या कुछ भी स्प्रे करें तो उसमें ध्यान दें कि तेज हवा ना चल रही हो, बारिश ना हो रही हो, ओपन फील्ड कंडीशन में। अगर पॉली हाउस में है तब तो ठीक है, नहीं तो बाहर ओपन फील्ड कंडीशन में तेज हवा चल रही है तो स्प्रे हमारा सही से नहीं होगा। अगर बारिश होने की संभावना है तो भी अभी हम स्प्रे करके जाएंगे वो पानी गिरने से पूरा बह जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, तो उसका भी पौधों में वो ट्रांसलोकेशन अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो भी हमारा वेस्टेज होगा, दवाई का प्रभाव अच्छे से नहीं होगा। तो इन सब बातों को भी हमको स्प्रे करते समय ध्यान देना।
1: कार्यक्रम के अंत में स्वस्थ लाभकारी एवं सतत सब्जी खेती के लिए आप सब्जी उत्पादक किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: अच्छे किस्मों का हम चुनाव करें, अधिक उत्पादन के साथ साथ हमारी बहुत सारे किस्में हैं जो कि बहुत सारे रोग और कीट रोधी रोग रोधी किस्में हैं। तो किसान भाई ऐसे किस्मों का चुनाव करें और तमांग के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो किस्में हो, कम पानी में हो ताकि पानी की भी हमारी बचत हो, कम न्यूट्रिएंट वाली भी हो, इससे भी हमको न्यूट्रिएंट की भी हो। ऐसी बहुत सारी अनेक विभिन्न प्रकार के फसलों में सब्जियों किस्मों का विकास किसानों ने किया है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट और साथ में हाइडलिंग वैरायटीज हैं। ऐसा करने से हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं, पर्यावरण का भी इसमें ध्यान रख सकते हैं और हमारा खेती से होने वाली इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। जब हमारा लागत कम होगा तो निश्चित रूप से हमारा इनकम बढ़ेगा।
1: तो आज आपने एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में समय निकाल कर आए और हमारे किसान श्रोताओं को सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन किस तरह से करनी चाहिए इस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के SMS यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से सब्जियों में रोग और कीट प्रबंधन विषय पर भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थी दर्जी ड्रामा। इसके साथ आज का कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय शाम के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

अभी आपने सुना फिल्म गीत गाता चल से गीत, जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में गीतकार थे रविंद्र जैन व संगीत था रविंद्र जैन का। श्रोताओं आप सुन रहे कार्यक्रम फौजी बायोकिल फिल्म संगीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे संदीप श्रीवास्तव द्वारा शब्द फिल्म न्यूयॉर्क से। के की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

फिल्म न्यूयॉर्क के संगीत के साथ कार्यक्रम फौजी भाइयों की फिल्म संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

0: उमिन ऑनलाइन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक सहयोग, रक्षा एवं सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहायता, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के विशेष रूप से व्यापार एवं निवेश, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने में रुचि व्यक्त की है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना ने पिछले 6 वर्षों में लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आसान ऋण उपलब्ध कराने और स्थायी आजीविका बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2020 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी वाले ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराकर असंख्य स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज जारबोम गाबलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के छात्रों के साथ मुलाकात कर संस्थान से जुड़े बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन आवश्यकताओं तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की। छात्रों ने अपने सुझाव और चिंताएं साझा की तथा कॉलेज को और सशक्त बनाने एवं छात्र समुदाय के लिए सुविधाओं में सुधार के उपायों पर चर्चा की। बाद में मुख्यमंत्री ने कालाकतांग विधायक शेतेन चौबे के साथ कालाकतांग सोपा परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोपा परिषद जैसी पारंपरिक संस्थाएं सामुदायिक विश्वास और सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला है। उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई के बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक भवन में आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं सत्र 2025-26 के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर बधाई दी और उनकी लगन, कड़ी मेहनत तथा दृढ़ता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बेहतर शैक्षणिक अवसंरचना, शिक्षण संस्थानों तक बढ़ती पहुंच तथा उच्च शिक्षा के विस्तारित अवसरों ने विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठाने, समर्पण के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर सीखते हुए एकाग्र रहने और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने नामसाई स्थित यूपीएससी कोचिंग केंद्र में ताए आहोम समुदाय के 5 विद्यार्थियों की निःशुल्क कोचिंग का प्रायोजन करने की भी घोषणा की। अपर सियांग उपायुक्त तालो जेरांग ने आज यिंकियोंग स्थित उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में एक शोक सभा में आयोजित कर दिवंगत उपमंडलीय अधिकारी यिंकियोंग तोनी मिटकोंग को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका शनिवार को निधन हुआ। उपायुक्त ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन ने उनके असामयिक निधन से अत्यंत व्यथित है। उपायुक्त ने कहा कि दिवंगत एक ईमानदार और समर्पित अधिकारी थे, जिनका जनसेवा में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उपायुक्त ने शोक संतप्त परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 14 जिलों पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कमले, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, सीयोमी, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उच्च याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा मौजूदा पेन पेपर मोड के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मोड में कराने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा है कि पुनर्परीक्षा को सीबीटी मोड में कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 तारीख को निर्धारित की है। 10 राज्यों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटों, राजस्थान, मध्य प्रदेश की 3-3 सीटों, झारखंड के 2 सीटों तथा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की 1-1 सीट के लिए इस महीने की 18 तारीख को मतदान एवं मतों की गिनती भी की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय हगियानी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड विजिटिंग म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन ऑंग लैंग टुडे हेल्ड डिटेल्ड टॉक्स ऑन द एंटायर गैमट ऑफ बायलैटरल इश्यूज।

आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। कार्यक्रम देशभक्ति गीत के अंतर्गत फिल्म मैरी कॉम से विशाल ददलानी और सलीम मर्चेंट की आवाज में। शब्द रचना है संदीप सिंह के व संगीत है शिवम का।

फिल्म मैरी कॉम किसी गीत के साथ कार्यक्रम देशभक्ति गीत यही पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म आखिरी रास्ता से एस जनकी और मोहम्मद अजीज की आवाज में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की व संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है पैगंग लहू से आप है पेमा टशी तंजन दवा पासंग दंडुब।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आक्रमण से। शब्द रचना है आनंद बख्शी की व संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है DHP डिलहौ से। आप है पासंग गोनपो छिरिंग निमा दवा और संगे ड्रमा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म साथी से। मजरू सुल्तानपुर के लिए इस गीत को संगीत से संवारा है नौशाद ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है दातरंगी बातापारा छत्तीसगढ़ से। आप है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म बरम चारी से। शब्द रचना शैलेंद्र की व संगीत है शंकर जयकिशन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है जनकपुरी सहारनपुर से आप है जॉन डिकास्ट्रो, पर्ल डिकास्ट्रो, रोजी डिकास्ट्रो और विलिस डिकास्ट्रो।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म अंधा कानून से। शब्द रचना है आनंद बख्शी के व संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है सोनबिल कुदाली आसाम से। आप है हितेंद्र दास।

श्रोताओं, अभी आप आने ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि के ठीक 9 बजे न्यूज़ @9।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। WTT फिडर टेबल टेनिस में दिव्यांशी भौमिक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता, फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। भारतीय पुरुष टीम ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कोरिया को 4-1 से हराया और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टेबल टेनिस से, जहां दिव्यांशी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। WTT फेडर टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब जीता। आइए जानते हैं उनके प्रदर्शन के बारे में।
1: दिव्यांशी भौमिक 15 वर्ष की आयु में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सिंगल्स खिताब जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। विश्व रैंकिंग में 211वें स्थान पर काबिज दिव्यांशी ने फाइनल में चीनी ताइपे की विश्व नंबर 38 ये ही तियान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से पराजित किया। वे जापान की स्टार खिलाड़ी मीवा हरिमोतो के बाद WTT फीडर सर्किट में महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी मानी जा रही हैं। दिव्यांशी ने अपने शानदार अभियान में एक और स्वर्ण उपलब्धि जोड़ते हुए महिला डबल्स वर्ग का स्वर्ण पदक भी जीता। दिव्यांशी ने सिंड्रेला दास के साथ मिलकर जापान की साची आओकी और कोकोना मुरामात्सु की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर, जहां डिफेंडिंग चैंपियन ने टाइटल डिफेंड करते हुए शानदार जीत दर्ज की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL का खिताब लगातार दूसरी बार जीता। फाइनल में RCB ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। आइए सुनते हैं विशेष शुक्ला की खास रिपोर्ट।
2: फाइनल मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गुजरात के सलामी बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन इस अहम मैच में फ्लॉप रहे। सुदर्शन 12 और गिल 10 रन बनाकर आउट हुए। GT की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर एकमात्र सफल बल्लेबाज रहे। सुंदर ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। रसिक सलाम डार ने 27 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। 156 रन के लक्ष्य के जवाब में वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने RCB को तेज शुरुआत दी और 5वें ओवर के भीतर 62 रन बना दिए। अय्यर ने ताबड़तोड़ 32 रन की पारी खेली। 89 रन पर 3 विकेट गवा देने के बाद विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह विराट का IPL में सबसे तेज अर्धशतक था। विराट ने 42 गेंदों पर 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेलकर RCB को 5 विकेट से जीत दिलाने और लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। कोहली ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर RCB को चैंपियन बनाया।
3: That's it. He finishes off in style with a 6. It's back-to-back titles for RCB. They won it after 18 years. They win it in the 19th.
2: RCB ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर खिताब जीता। फाइनल में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि मैं इसी तरीके से मुकाबले को अपनी टीम के लिए जिताना चाहता था।
4: Well, Virat, many congratulations. Yet again a player of the match. You saved the best for the last.
5: It's stuff that you dream of. I've thought of this moment many times that, you know, once when we win the IPL, I should be standing there hitting the winning runs and tonight it was possible. So, yeah, just a dream day for us and as I mentioned straight after the game as well, we just felt really relaxed coming to the game today and really confident about how we wanted to go about our game and what kind of team we have and you, that gives you confidence to just, you know, see any kind of situation through. But yeah, in a chase I felt really comfortable out there knowing exactly what to do.
2: 2025 mein RCB ne Punjab Kings ko hara kar IPL ka pehla khitab jeeta tha. Rajat Patidar ki kaptani mein Bengaluru ne lagatar dusri baar khitab jeet kar Chennai Super Kings aur Mumbai Indians ke elite group mein shirkat kar li hai.
5: So this one is for you again, RCB fans. ई साला नु कप नमदू।
2: वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। प्रतियोगिता में सबसे अधिक 776 रन बनाने के लिए वैभव को ऑरेंज कैप से भी नवाजा गया। वैभव ने सबसे अधिक 72 छक्के लगाए और उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर का भी अवार्ड मिला। अवार्ड लेने के बाद वैभव ने कहा, इस प्रतियोगिता से मेरे खेल में बहुत सुधार हुआ है।
6: इस सीजन सर प्रेशर्स के गेम में कैसे खेलना है, अपने गेम को कब किस तरीके से चेंज करना है? हर गेम में आप एक मोड से नहीं खेल सकते, आपको गेम के सिचुएशन को रीड करके खेलना पड़ेगा और टीम का क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। तो ये चीज काफी सीखने को मिला प्लेऑफ्स के गेम्स में भी।
2: 17 वर्ष तक IPL खिताब का इंतजार करने वाली

0: आरसीबी का यह लगातार दूसरा खिताब है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्कृष्ट प्रदर्शन भारत के युवा एथलीटों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि से आने वाले वर्षों में और भी भारतीय युवा इस खेल में भाग लेंगे। गृहमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धि भारत की अपार खेल प्रतिभा का प्रमाण है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है और युवा शक्ति ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने हांगकांग में आयोजित हुई 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 14 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ पहले, वहीं जापान 5 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। इंडोनेशिया के जकार्ता में कल से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे।
2: सिंगापुर ओपन जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरपूर भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल से इंडोनेशिया ओपन में भाग लेंगे। भारतीय जोड़ी अपने पहले मुकाबले में 4वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के कांग खाई शिंग और आरोन ताई से भिड़ेंगे। पुरुष डबल्स में भारत की दूसरी जोड़ी MR अर्जुन हरहरन अमसा करुणन का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहद अजरीन, आयुष अजरीन और तान वी क्यूंग से होगा। महिला सिंगल्स में PV सिंधु अपने अभियान की शुरुआत बुसानन आंग बांग रुंग फान से खेलेंगी। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में मालविका मंसूर का सामना थाईलैंड की 7वीं वरीयता प्राप्त पोन पावी चोचुवोंग से होगा, जबकि उन्नति हुडा को पहले दौर में जापान की विश्व की नंबर 12वीं खिलाड़ी नोजुमी ओकुहारा जैसी मजबूत प्रतिद्वंदी मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के अलवी फरहान से भिड़ेंगे। वहीं किदांबी श्रीकांत का सामना जापान की युशी तनाका से होगा। आयुष शेट्टी का मुकाबला चीन के वेंग होंग यांग से होगा, जबकि HS प्रणॉय आयरलैंड के एनट के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो के साथ रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद इंडोनेशिया की फेब्रियाना द्वीपुजी कुस्मा और मेलिसा ट्रियास पुष्पिता सारी के साथ खेलेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब बात कर लेते हैं हॉकी की। पुरुष अंडर 18 हॉकी में आज एशिया कप के पूले मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हराकर भारत ने शानदार जीत दर्ज की। कप्तान केतन कुशवाहा के 2 गोल किए। कुशवाहा ने 3rd और 36th minute में गोल दागे, जबकि वरिंदर सिंह ने 5वें और शाहरुख अली 54th minute में 1-1 गोल किया। भारत अब 3 जून को अपने अंतिम पूले मुकाबले में चीनी ताइपे से भिड़ेगा। अब रुख कर लेते हैं फुटबॉल की ओर। भारत ने महिला SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने कल गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से हराकर चैंपियनशिप के ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं 11 जून से शुरू होने वाला फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रसारण भारत में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड करेगा। जी ने टूर्नामेंट से 10 दिन पहले आज फुटबॉल की विश्व संचालन संस्था फीफा के साथ 8 साल की भागीदारी की घोषणा की। रांची में आयोजित हुई फेडरेशन कप में 100 मीटर फ्रीस्टाइल दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर ने कल मन की बात के 134वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रतियोगिता में हुई कठिनाइयों और संघर्ष के बारे में जाना।
3: सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 मीटर रेस में दौड़ना कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी? थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
4: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते।

0: मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी है कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है, तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है। बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही, उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदरवीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कॉम्पिटिशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की, एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू, भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल, और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के

0: राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक

0: गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
2: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
2: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi Aung Lyan hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow.